0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो